नजमुराए अंदर सी शिलमियाए उभीले न सुकराए अंदर सी शिलमियाए उभीले न कताले ताहाए नसीबी जीतन जाए तालियन मजाए ताली